0: formula. The final diagram I partially uncovers the document. Kripaya, please submit the Punat Wall formula.
1: Phone like it is home.
0: The final diagram I part.
2: सवारी साधन ड्राइभ गर्दा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ। यदि प्रयोग गर्ने परेमा सवारी साधन साइड लगाऊ।
3: जनहितका लागि रेडियो सिटी एफएम 98.8 को अनुरोध।

0: केवल रेडियो सिटी एफएम 98.8 मा हरेक आइतबार राति 8-9 बजेसम्म र पुनः प्रसारण हरेक सोमबार मध्याह्न 12-1 बजेसम्म ओल्डी गोल्डी सुन्नुहोस् म रूपाको साथमा
1: लोहा।